0: यजमानस्य शिवगोत्रोद्भवस्य मृग नक्षत्रेः अटङ्गापटारि जातस्य पेरन्नघटियो
1: सुमति सुमति
0: सुमति नामदेयस् सिङ्गारवेलन् लव्वस्य वरुङ्गाल वैफस्य देवसेना समेत सुब्रह्मण्य स्वामिने अष्टोत्र नमः पूजां च करिष्ये अय्यय्यो पोरिये पोरिये
2: अरे वो रंगा श्रीलंगा कोपर तेंगा इंगे

0: कितना साउंड उड़ा मार गिरा तो रमो वाया
1: कंपो चला गोड़ी पर रखो कुप्पो चला छोसु पर रखो हट जा।